0: अपने सभागी अब क्या
1: मुखन
0: संभजे तो
1: परमात्मा
0: को सतु जम उन्हें लड्डू को अपन इन दुनिया को